मरदी सूरज मरदा मरदा ते जग मरदा ए हवा मरदी सूरज मरदा मरदा ते जग मरदा वे जे कसमा खाना मरदा कोई फे सब तो पहला रब मरदा फे सब तो पहला रब

पता चल गया कौन सा नशा करता है, वो नए नए फूलों से मजा करता है। ये कैसा बंदा भेजा तूने दुनिया में खुदा, ऐसी गलती थोड़ी ना खुदा करता है।

0: बताए रे।
1: अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली देखता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है रे।